प्रतिभा वास्तविक स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारी प्रतिबद्धता घटी मेरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वरूप रूप में टिप्पणी यहाँ स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पहल प्रकार से कौशल्य अस्पताल बांसगिरी

0: ప్రస్తుతాన తీస్తా తీసా ప్రయత్న సంఖ్య ఉచ్చ రక్తదాబు జోకిమ్మ प्रस्तुति तथा तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धीरे हुए होता मोटो रोग को जोखिम होने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एवटा व्यक्ति दैनिक 5 ग्राम सम्म नुन सेवन कर उपयुक्त होने सलाह दिया
1: नियमित रूप में हिडुल शारीरिक व्यायाम ने मोटो स्वस्थ बनाने मदद कर
0: संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तनाव मुक्त रहता मोटो रोग
1: चालीस वर्ष कटे नियमित स्वास्थ्य जांच करो
0: चीनी पदार्थ मात्र मासु कम खाओ खाना में सात्ता और फल फूल खाओ
1: मद्यपान धूम्रपान सेवन न करो
0: स्वस्थ रहो सुखमय जीवन बिताओ
2: रेडियो गुरुवार द्वारा जल्दी प्रचार संदेश

0: पनि पछि जस्तै स्वास्थ्य सेवामा प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य सेवामा सर्वस्वतन्त्र स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पर्ने प्रकारले कौशल्य अस्पताल पास गरीमा सम्पर्क गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै अस्पताल सेवा चौबिसै घण्टा डाक्टरले प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गर्दै
1: प्रत्येक दिन बिहान 8 बजे से सन्ध्या 6 बजेसम्म विशेषज्ञ फिजिसियन डाक्टर से प्याज छाती कलेजो नसा मुटु चेक जाँच गरिन्छ
0: प्रत्येक दिन नसा तथा निम्रो सर्जरी हात जोड्ने तथा जनरल सर्जरी प्रसुति सेवा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा चेक जाँच गराए
1: 24 घण्टा डिजिटल एक्सरे भिडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याबको सेवा उपलब्ध भा पेरालाइज शिशुको मुखबाट होइन नसा दाब गैलक हात द्वारा अनि चल्ना बिरामी मुखन प्याज फिजियो थेरापी तथा थेरापी विधि बसे उपचार कैसेछ
0: नसा दाब गैलक बिरामी मुखन के दिन अपरेसन फिजियो थेरापी तथा एकुपन्चर थेरापी से सफल उपचार गर्दै
1: 24 घण्टा एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिदिँदा असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बाल बालिका अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक उक्त सेवामा 10% छुटकै व्यवस्था गरिदिँदा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसरी शाखा 5 बाँसरी बर्दिया तुरन्त पेपर पल्प दक्षिण पाजर
0: सम्पर्क फोन नम्बर 084400192 हो 084400210 बाँसरी बर्दिया संसदीय फोन 14

शरीर को करने में रक्त कमी अर्थात रक्त अल्पता अधिक करना रक्त अल्पता होने से सतत टटकाव लगना चक्कर अनुहार की कमी न हो पढ़ाई में ध्यान देना समझ लेना रक्त अल्पता में से पचकला काई साग पात दाल गुड़ घेरा आरा मच्छी

बसेको थिए स्वस्थ जीवन अपनाई निशाना रोग झट्ट बहन ध्यान दिए जीवन खत्तम हुई सन्तुलित खाना खाए व्यायाम शब्द करी धुनो पान मदिरामा सेतु नगरी तर भन नियन्त्रण गरी आज निर्भय कायिक जीवन नजरा

0: ये किसान से सब लोग सदन के हैं मैं बता सकते हैं जो कोई यहाँ ऐसा बा कि जान रास्ता यहाँ सिटी तो में रास्ता रही है बढ़िया फ्यू हो बहुत बढ़िया चीज हो तो फ्यू बहुत बेकार होती हूँ रेडियो 12 FM कोरोना के 10.7 में कहा
1: पूरा समाचार।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नेपालमा 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचापको जोखिममा छन्। प्रशोधित तथा तयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बाका खानामा सोडियम धेरै हुने हुँदा मुटु रोगको जोखिम बढ़ाउने गर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा व्यक्तिले दैनिक 5 ग्रामसम्म नुन सेवन गर्नु उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको छ।
1: नियमित रूपमा हिँड्डुल र शारीरिक व्यायामले मुटु स्वस्थ बनाउन मदद गर्छ।
2: सन्तुलित भोजन पर्याप्त निन्द्रा सकारात्मक सोच एवं चिन्ता र तनावबाट मुक्त रहँदा मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ।
1: 40 वर्ष कटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौं।
2: चिलो पदार्थ माछा मासु कम खाऊ। खानामा सागपात र फलफूल खाऊ।
1: मद्यपान र धुम्रपान सेवन नगरौं।
2: स्वस्थ रहौ सुखमय जीवन बिताऊ।
3: रेडियो गुरुवाला FM द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: आफ्नै भाषा आफ्नै आवाज समावेशी रेडियोको साझा आवाज यो रेडियो गुरुवाला FM 90.7 मेगाहर्ज।

0: रेडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश।
1: निशामा रोग बसेपछि स्वस्थ जीवन अपनाई। निशामा रोग झट्ट बहत झारी दिनेबेर जीवन खत्म हुई। सन्तुलित खाना खाई, व्यायाम सद्ध करी, धूम्रपान

0: कार्यमा स्वास्थ्य कार्यले कर्पियासी जनहित मन्त्रालय सन्देश
1: सब्जेक्ट।

0: Peace.
1: आहार को दूध बच्चा को पहले औषधि हो करने को एक हजार रुपया खरीदारी छह महीना आहार को दूध खाते खुआ स्वस्थ बच्चा उजालो भविष्य स्तन पान कराओ स्वास्थ्य बताओ
2: स्वास्थ्य कार्य।

पुरगरी पुनर्भर निरन्तरी आज निर्णयकारी जीवन बजार मुसलमान पशे पार्टी स्वस्थ जीवन अपनाई रेडियो पूर्वाधार चौक सहकारी स्वास्थ्य कार्यालय प्रत्याशी गरी

हजार रुपए प्रमाण कर ले जाते हैं वो कैसा है नेपाली भाषा में उसको ये लोग देखता है कत माता सीटी आयो कत माता ताली उसको ये लोग देखता है कत माता सीटी आयो कत माता ताली सबका को मन मन बसी यार ये लहंगा वाली नहीं ध्यान से बता रही है।